जदों समय दा चक्कर चलदा ए, जदों समय दा चक्कर चलदा ए, रिश्ते नाते सब तोड़ के सुटते, वो रिश्ते नाते सब तोड़ के सुटते, प्यार वफा सब जड़ तो पुटते, पीछे कौड़ी पजदा फिरदा, पता न कोई पलदा ए, जदों समय दा चक्कर चलदा ए, जदों समय दा चक्कर चलदा ए, लेखा लिखिया मेट न सकदा, हो लेखा लिखिया मेट न सकदा, की होना कल वेख न सकदा, ताही हिरदा दुखड़े चलदा ए, जदों समय दा चक्कर चलदा ए, जदों समय दा चक्कर चलदा ए, शरणजीत प्रेम हुण विकदा ए, शरणजीत हुण प्रेम विकदा ए, नैणे हंजू सच लिखदा ए, तुर दरगाहे लेखा देना, तख्त हिजरे दा हलदा ए, जदों समय दा चक्कर चलदा ए, जदों समय दा चक्कर चलदा ए।

तेरे ते दा एहसान सारी जिंदगी मैं ढोआ, तेरे हासिया च हसा, तेरे रोने च रोआ।

0: धन्यवाद जी।
1: मैं अंत दे विच दुआबा रेडियो दे तीवें कवि दरबार दे विच पेश हुए सारे कवियां दा बहुत बहुत धन्यवादी हाँ जिन्हां ने अपने कीमती समयां दे विचों समां कढ के साडे दुआबा रेडियो दे श्रोतियां नूं नवाजिया ते आस करदे हाँ कि सदा ही वो इसे तरह सानूं सहयोग दिंदे रहणगे ते अंत दे विच हरवंश सिंह वालों एक बार फिर सारे श्रोतियां नूं ते शायर दोस्तां नूं आदाब नमस्कार सत श्री अकाल कुदरत खैर करे अलविदा प्यारे दोस्तों आमीन।

अपने खातर दुनिया मर दी मिट दी आई ए, किसे दी खातर दसो कीने जान गवाई ए, किसे दी खातर दसो कीने जान गवाई ए। चरखड़िया ते चढ़ना बंद बंद कटवाना बड़ा ही औखा है, सरबंस बार के धर्म निभाना बड़ा ही औखा है, मखमल छड़ के कंडे आते सोना बड़ा ही औखा है।

ऐसे ही तो जरूरी है मीठे वचन, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, उसका जीवन तो है एक शमशान का, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, उसका जीवन तो है एक शमशान का।

खुश रहे जो सदा उसकी मौज में, दास सच्चा वही तो है भगवान का। खुश रहे जो सदा उसकी ही मौज में, दास

बन दासी हम साया मेरा, कहंदा सी जो खास कदे, कहंदा सी जो खास कदे, पल्ले मेरे दर्द विछोड़े, रोंदी गानी शगना दी, चन सितारे खुशियां केड़े नहीं आए रास कदे, शीशे अगे खड़के जद भी चेता आया बीतदा बीत पल।